इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भवन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भवन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? हम सब मौज ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा भोजन मिल जाए, बढ़िया आराम मिल जाए, समाज में नाम और प्रतिष्ठा मिल जाए, तो बस जीवन सफल हो जाए। हम इसी बाहरी मनोरंजन और सुख सुविधाओं को ही जीवन का असली मकसद मान लेते हैं। हम इस संसार की चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं जैसे कोई बच्चा मेले के खिलौने में खोकर अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है। लेकिन कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि इस संसार की जिस मौज के पीछे तुम भाग रहे हो, वह असल में एक बहुत बड़ा छलावा है। वह तुम्हें उस असली खजाने से दूर ले जा रही है जिसे पाने के लिए तुम्हें यह अनमोल जीवन मिला था। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सत्य से भरा दार्शनिक सूत्र। कबीर हरि की भक्ति करी तजी जन्म की चौज, बार बार नहीं पाइए मनीषा जन्म की मौज। कबीर

0: श्रोताओं, कबीर साहब सीधे शब्दों में निर्देश देते हैं, कबीर हरि की भक्ति करी, तुम उस परमात्मा की, उस भीतरी चैतन्य सत्ता की भक्ति करो, उससे नाता जोड़ो, तजी जन्म की मौज और इस संसार के भौतिक जन्म की जो क्षणिक मौज हैं, जो इंद्रियों के झूठे सुख हैं, उनका मोह तज दो, उन्हें छोड़ दो। कबीर यहाँ जीवन जीने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस आसक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को अंधा बना देती है। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे इसके पीछे का शाश्वत सत्य उजागर करते हैं, बार बार नहीं पाइए, यह अवसर तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म की मौज, यह मनुष्य जन्म का जो अद्भुत और विलक्षण अवसर तुम्हें मिला है, यह अस्तित्व की एक अनमोल देन है। अगर इसे तुम सिर्फ संसार की व्यर्थ की मौज मस्ती में गवा दोगे तो यह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अगर इसे हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ कबीर श्रेय और प्रेय के बीच का अंतर समझा रहे हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि संसार में दो मार्ग हैं, एक प्रेय जो सुनने और देखने में बहुत प्रिय लगता है, यानी संसार की मौज, और दूसरा है श्रेय जो कल्याणकारी है, यानी परमात्मा का मार्ग। मतिहीन मनुष्य प्रेय को चुनता है और अपनी मूल चेतना को वासनाओं की भट्टी में छोक देता है। कबीर समझा रहे हैं कि मानव जीवन कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, बल्कि यह आत्मा के रूपांतरण की एक प्रयोगशाला है। अगर यहाँ आकर भी चेतना ने हरि भक्ति यानी आत्मज्ञान का स्वाद नहीं चखा तो मनुष्य संसार की छोटी मोटी खुशियों के बदले अपनी अमरता का सौदा कर बैठता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी मौज की परिभाषा को टटोलिए। जिन चीज़ों को पाकर हम आज खुश हो रहे हैं, क्या वे हमारे साथ हमेशा रहेंगी? जो सुख आज है और कल दुख में बदल जाता है, क्या यह सचमुच मौज है? आज कोशिश कीजिए उस परम मौज को ढूंढने की जो परमात्मा की भक्ति में है, जो आत्मसंतोष और भीतरी शांति में है, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर उस हरि को याद रखिए। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और यह दुर्लभ अवसर धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है। इससे पहले कि यह जन्म समाप्त हो, अपनी चेतना को जगाइए और उस आनंद से जुड़िए जो कभी खत्म नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।
1: श्रोत्यो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284449433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर।
2: तू या बठ्ठा जगमातील लाख लाख जीव जंतुस्थायी जनावरे स्थायी न्यारा, ह्या तुवर कोणा उपकार कोणास नाही। तुवर येणारी आफत मरण आणि रोगराई हो कोणा सराप कोणास नाही। हाई सबन शिरिष्टीना शेतो जलम जात कायदा, न्यारा न्यारा बारीक बोरी गोया बेरीज सर मिसय मातून करम करना बाजत, त्या मै जे चालत येस ते पहिला थाई रास उज्जय, चांगला वांगलाना ठसाना रास टाईम ठरेल। या खरा थाई तू अनभग कशासाठी, तुना मेंदूनी हालचाल न्यारी काब, अरे काबू पही राहना खरा ताई दूर, लोटी राहना तूस तुले खाईमा बेमालूम। तुनी हुशारी लंगडी हुईगी, तू ताकतवाला अशी संभी गुलाम बनी गया, तू घाबरी गया आप थिसले, घाबरी गया झगडासले, दिनात आत पाय गई दकिसनी मरण तुले उमजदी तुनी ताखात तो ना मेंदू तुनी हुशारी आपुरीशे तो मत बराबर तोंड देवा गुंता मरणशे बिडा गुंता दुख ना पाय रे ललाय ना तू तुले तुना ठाव ठिकाणा पाला पाचोया मईक वाटाले लागना म्हणशीन आलत्या बलत्या ताकतीसना टेका धुंडासाठी तू पैना आणि पैज राहिना तोमतीसताई झगडासताई बेव संघटली सनी गुस्सा खार आखो मतलब आणि मायाले सवताना संगे नाचाडत मन सारखं काहीच होत नाही म्हणशीन गुस्सा जागी करीसनी आपला सुखनाडे कोणीतरी राहिनं म्हणशीन इरा झाले आयसत मायसत आमायत कोमायत तू कले पती पै राहिना वा जी पै राहिना येडाना माईक ठाव ठिकाणा राही तदलांगे भविष्य मातल्या गोष्टीसले आमायत कोमायत सपन मातल्या उमेद थाई तू ना हुशारीले खल्ली समजीवन नाही तू ना मधारच चिटकी वठेल दोस तू हुशारीवाला राहीसन बी तू हाकलात नाही त्यासले बाहेर नाही कापी शिनी पेकात तू तुना मला लपी बटेल रोग तो होय ह्या रोग तुना मागेच लागणार लागो पाठ आयात बर तू पलगडी दिले चांदण्या दखत गया रोग बरा व्हावा गुंता तुना येटाय म्हटला कोणीतरी दमटाडी सन बोंबली उठना मला समजन अरे मी बोली दाखाडू या अहंकार मातीन तयार व्हायला लागणार न्यारा न्यारा विचार माणूस परत जिचारस न लोंडा आणि न्यारा न्यारा मठ आणि पीठना गोसावड्यासले बी नाही उमगना या निसर्गांना खे आणि त्यानं बिगर भाड भिडणं बरं जाणं म्हणशिनी त्यासनी आदरी जांभली काढात तंतर मंतर गंडा दोर्रा आणि देवना सराप त्यासनी आपला फायदा नियमन करली ना आखो त्यास संघट होतात त्या माणशेसना येटायाले शानावात करी दिना त्यामयी जलमनं कुभाण त्यामयी मौरेऊनी पुंजापत्री त्यामयी मौरेऊना तोंड चोपड्या भाट आणि जलमनात भाटगिरी ऐकणारा बी माणूसले गुंडावणारी बुद्धीले आंधी करणारी वाट बैजबरी ताकात वाहन वत गई आणि माणूसना अंगणी जनावरे सारखी दशा जाई एक दुसऱ्याले पायखुटी घालणारेसना कयम जलमनात माणूस माणूस मा फरक करानी दवंडी पिटायनी माणूस माणूस मा अंतर भलं मोठं वध्य आप मतलबीपणा कावराई घ्या सुख भोगासाठी येडा होई घ्या माणूसनं मन सतरा वयन थाई नाहीच भरायनं वध्य वाईट ताबा सुटेल ना माईक कथांमाथा माणुसकी राग धराले लागणी माणूस वरे असा करतूत ना पायरे दिखाले माणूसनं चलिंतर जनावरेसना माईक इचार राक्षसना असाले माणूस म्हणशात का गले पते करम।
3: नमस्कार मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: गीताई अध्याय दुसरा आत्मज्ञान आणि समत्व बुद्धी किंवा सांख्य योग। संजय म्हणाला असा तो करुणाग्रस्त घाबरा अश्रुगाळीत करीत असता खेद त्यास हे कृष्ण बोलिला श्री भगवान म्हणाले कोठोनी भलत्या वेळी सुचले पाप हे तुझ असे रुचे न थोरास याने दुष्कीर्ती दुर्गती निर्वीर्य तू नको होवो न शोभे हे मुळी तुझ भिकार दुबळी वृत्ती सोडूनी ऊठ तू कसा। अर्जुन म्हणाला कसा रणांगणी झुंजू भीष्म द्रोणांविरुद्ध मी ह्यास बाण कसे मारू आम्हा

0: जगावे।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आपले खानदेश, आपली मानसर.
1: मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, हम सब अपने जीवन में क्या ढूंढ रहे हैं? हम सब मौज ढूंढ रहे हैं. हमें लगता है कि अच्छा भोजन मिल जाए, बढ़िया आराम मिल जाए, समाज में नाम और प्रतिष्ठा मिल जाए तो बस जीवन सफल हो जाए. हम इसी बाहरी मनोरंजन और सुख सुविधाओं को ही जीवन का असली मकसद मान लेते हैं. हम इस संसार की चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं जैसे कोई बच्चा मेले के खिलौने में खोकर अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है. लेकिन कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि इस संसार की जिस मौज के पीछे तुम भाग रहे हो वह असल में एक बहुत बड़ा छलावा है. वह तुम्हें उस असली खजाने से दूर ले जा रही है जिसे पाने के लिए तुम्हें यह अनमोल जीवन मिला था. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम सत्य से भरा दार्शनिक सूत्र. कबीर हरि की भक्ति करी तजी जन्म की चौज, बार बार नहीं पाइए मनीषा जन्म की मौज.

0: मौज। श्रोताओं, कबीर साहब सीधे शब्दों में निर्देश देते हैं, कबीर हरि की भक्ति करी, तुम उस परमात्मा की, उस भीतरी चैतन्य सत्ता की भक्ति करो, उसे नाता जोड़ो, तजी जन्म की मौज और इस संसार के भौतिक जन्म की जो क्षणिक मौज हैं, जो इंद्रियों के झूठे सुख हैं, उनका मोह तज दो, उन्हें छोड़ दो। कबीर यहाँ जीवन जीने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस आसक्ति को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो मनुष्य को अंधा बना देती है। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे इसके पीछे का शाश्वत सत्य उजागर करते हैं, बार बार नहीं पाइए, यह अवसर तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म की मौज, यह मनुष्य जन्म का जो अद्भुत और विलक्षण अवसर तुम्हें मिला है, यह अस्तित्व की एक अनमोल देन है। अगर इसे तुम सिर्फ संसार की व्यर्थ की मौज मस्ती में गवा दोगे तो यह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। अगर इसे हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ कबीर श्रेय और प्रेय के बीच का अंतर समझा रहे हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है कि संसार में दो मार्ग हैं, एक प्रेय जो सुनने और देखने में बहुत प्रिय लगता है, यानी संसार की मौज, और दूसरा है श्रेय जो कल्याणकारी है, यानी परमात्मा का मार्ग। मतिहीन मनुष्य प्रेय को चुनता है और अपनी मूल चेतना को वासनाओं की भट्टी में छोक देता है। कबीर समझा रहे हैं कि मानव जीवन कोई मनोरंजन पार्क नहीं है, बल्कि यह आत्मा के रूपांतरण की एक प्रयोगशाला है। अगर यहाँ आकर भी चेतना ने हरि भक्ति यानी आत्मज्ञान का स्वाद नहीं चखा तो मनुष्य संसार की छोटी मोटी खुशियों के बदले अपनी अमरता का सौदा कर बैठता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी मौज की परिभाषा को टटोलिए। जिन चीज़ों को पाकर हम आज खुश हो रहे हैं, क्या वे हमारे साथ हमेशा रहेंगी? जो सुख आज है और कल दुख में बदल जाता है, क्या यह सचमुच मौज है? आज कोशिश कीजिए उस परम मौज को ढूंढने की जो परमात्मा की भक्ति में है, जो आत्मसंतोष और भीतरी शांति में है, संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर उस हरि को याद रखिए। समय बहुत तेजी से बीत रहा है और यह दुर्लभ अवसर धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है। इससे पहले कि यह जन्म समाप्त हो, अपनी चेतना को जगाइए और उस आनंद से जुड़िए जो कभी खत्म नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284449433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: तू या बठ्ठा जगमातील लाख लाख जीव जंतुस्थायी जनावरेस्थायी न्यारा, या तूवर कोणा उपकार? कोणास नाही। तुवर येणारी आफत, मरण आणि रोगराई हो कोणा सराप? कोणास नाही। हाई सबन शिरिष्टीना शेतो जलमजात कायदा, न्यारा न्यारा बारीक बोरी गोया बेरीज सरमिसय मातून करम करांना बाजत, त्या मैजे चालत येस ते पहिला थाई रास उज्जय, चांगला वांगलाना ठसाना रास टाईम ठरेल। या खरा थाई तू अनभक कशासाठी? तुना मेंदूनी हालचाल न्यारी काब? अरे काबू पही रायना खरा ताई दूर, लोटी रायना तू सुले खाईमा बेमालूम। तुनी हुशारी लंगडी हुईगी, तू ताकतवाला अशी सन भी गुलाम बन गया। तू घाबरी गया आप तिसले, घाबरी गया झगडासले, दिनात आतपाय गाई दकिसनी मरण तुले उमजदी तुनी ताखात तो ना मेंदू तुनी हुशारी आपुरीशे तो मत बराबर तोंड देवा गुंता मरणशी बिडा गुंता दुख ना पाय रे ललाय ना तू तुले तुना ठाव ठिकाणा पाला पाचोया मईक वाटाले लागना म्हणशीन आलत्या बलत्या ताकतीसना टेका धुंडासाठी तू पैना आणि पैज राहना तोमतीसताई झगडासताई बेव संघटली सनी गुस्सा खार आखो मतलब आणि मायाले सौताना संगे नाचाडत मन सारखं काहीच होत नाही म्हणशीन गुस्सा जागी करीसनी आपला सुकनाडे कोणीतरी राहणं म्हणशीन इरा झाले आयसत मायसत आमायत कोमायत तू गले पती पै राहणा वा जी पै राहणा येडाना माईक ठाव ठिकाणा राही तदलांगे भविष्य मातल्या गोष्टीसले आमायत कोमायत सपन मातल्या उमेद थाई तू ना हुशारीले खल्ली समजीवन नाही तुना मधारच चिटकी बठेल दोस तू हुशारीवाला राहीसन मी तू हाकलात नाही ते असले बाहेर नाही कापी शिनी पेकात तू तुना मला लपी बठेल रोग तो होय ह्या रोग तुना मागेच लागणार लागो पाठ आयात बर तू पलगडी दिले चांदण्या दखत गया रोग बरा व्हावा गुंता तुना येटाय म्हटला कोणीतरी दमटाडी सन बोंबली उठना मला समजणं अरे मी बोली दाखडू या अहंकार मातीन तयार व्हायला लागणार न्यारा न्यारा विचार माणूस परत विचारच न लोंडा आणि न्यारा न्यारा मठ आणि पिटना गोसावड्यासले बी नाही उमगना या निसर्गांना खे आणि त्यानं बिगर भाड भिडणं बरंच जाणं म्हणशीनी त्यासनी आदरी जांभली काढा तंतर मंतर गंडा दोरा आणि देवना सराप त्यासनी आपला फायदा नियमन करली ना आखो त्या संघट होतात त्या माणशेसना येटायाले शानावाद करी दिना त्यामयी जलमनं कुभाण त्यामयी मौरेऊनी पुंजापत्री त्यामयी मौरेऊनात तोंड चोपड्या भाट आणि जलमनात भाटगिरी ऐकणारा बी माणूसले गुंडावणारी बुद्धीले आंधी करणारी वाट बैजबरी ताकात वान वत गई आणि माणूसना अंगणी जनावरेसारखी दशा जाई एक दुसऱ्याले पायखुटी घालणारेस ना कयत जलमनात माणूस माणूस मा फरक करानी दवंडी पिटायनी माणूस माणूस मा अंतर भलं मोठं वद्य आप मतलबीपणा कावराई घ्या सुख भोगासाठी येडा होई घ्या माणूसनं मन सतरा वयन थाई नाहीच भरायनं वद्य वाईट ताबा सुटेल ना माईक कथानमाथा माणुसकी राग धराले लागणी माणूसवरे असा करतूत ना पायरे दिखाले माणूसनं चलिंतर जनावरेसना माईक इचार राक्षसना असाले माणूस म्हणशात का गलेपते करम
3: नमस्कार मी आहे पुष्कर श्रोती आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग
4: गीताई अध्याय दुसरा आत्मज्ञान आणि समत्व बुद्धी किंवा सांख्य योग. संजय म्हणाला, असा तो करुणाग्रस्त घाबरा अश्रुगाळीत करीत असता खेद त्यास हे कृष्ण बोलिला. श्री भगवान म्हणाले, कोठोनी भलत्या वेळी सुचले पाप हे तुझ असे रुचे न थोरास याने दुष्कीर्ती दुर्गती निर्वीर्य तू नको होवो न शोभे हे मुळी तुझ भिकार दुबळी वृत्ती सोडूनी उठ तू कसा. अर्जुन म्हणाला, कसा रणांगणी झुंजू भीष्म द्रोणांविरुद्ध मी ह्यास बाण कसे मारू आम्हा हे पूजनीय की न मारिता थोर गुरुस येथे भिक्षाही मागुनी भले जगावे ही तेच्छु हे ह्यास वधूनी भोग भोगू कसे भंगुर रक्त मिश्र। ह्यांचा चिभावा जय आमुचा की कशात कल्याण असे न जानो। मारुणी जानते जगनेन इच्छु झुंजावया तेची उभे समोर। दैन्याने ती मारिली वृत्ती माझी धर्माचे तो नाशिले ज्ञान मोहे। कैसे माझे श्रेय होईल सांगा पायान पाशी पातलो शिष्य भावे। मिळेल निष्कंटक राज्य येथे लाभेल इंद्रासन देवलोकी। शमेल त्यानेन तथापि शोक जो इंद्रियांते सुकवीत माझा। संजय म्हणाला असे अर्जुन तो वीर ऋषिकेशास बोलुनी शेवटी मी न झुंजेची। ह्या शब्दे स्तब्ध राहिला मग त्यास ऋषिकेश जणो हसत बोलिला। करित असता शोक दोन्ही सैन्यात तो तसा। श्री भगवान म्हणाले करिसी भलता शोक वरी ज्ञान ही सांगसी। मेल्या जित्या विषी शोक ज्ञानवंत न जानती। मी तू आणिक हे राजे न मागे नवतो कधी। तसेच सगळे आम्ही न पुढे ही नसू कधी। या देही बाल्य तारुण्य जरावा लाभ ते जशी। तसा लाभे नवा देह न डगे धीर तो तिथे। शीतोष्ण विषय स्पर्श सुख दुःखात घालिती। करी सहन तू सारे येती जाती अनित्यते। ह्यांची मात्रा न चालेची ज्या धीर पुरुषावरी। समदेखे सुखे दुःखे मोक्ष लाभास योग्यतो। नसे मिथ्यास अस्तित्व नसे सत्यास नाशही। निवाडा देखिला संती ह्या दोहींचा अशा परी। जाने हे व्यापिले सर्व ते जान अविनाशतु। नाश त्या नित्य तत्वाचा कोणीही न करू शके। विनाशी देह हे सारे बोलिले त्यात शाश्वत। नित्य निस्सीम तो आत्मा अर्जुना झुंज ह्यास्तव। जो म्हणे मारितो आत्मा आणि जो मरतो म्हणे। दोघे न जानती काही न मारी न मरेची हा।